0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதயராகம். இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க நிலையத்துக்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய விருப்ப பாடல்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்த இணையும் அடுத்த அழைப்பாளர், வணக்கம்.
4: வணக்கம் மேடம்.
3: யார் பேசுறீங்க?
4: பெரம்பலூர் தர்மராஜ்.
3: சொல்லுங்க, உங்களுடைய விருப்ப பாடல் என்ன?

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 10:17. ஞாபகம் வருதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1. அடுத்த நேயர் வருக, வணக்கம். நலமா இருக்கோம், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
4: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவள்ளுவர் தாலுகா, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்.
3: சொல்லுங்க மூர்த்தி, என்ன பாடல் வேணும்?
4: பழைய பாட்டை பாட்டுங்க. பாட நினைத்தால் வாழலாம்,
3: அருமையான பாடலுங்க. அழைத்து மிக்க நன்றிங்க. நீங்க கேட்ட அந்த பாடல் இதோ
5: பாருங்க. பெண்புத்தி பின்புத்தின்னு சொல்லுவாங்க, நாம கொஞ்ச நாளையாவது பழகிட்டு இருந்த ஒரு, இந்த இதுக்காக சொல்றேன், பின்னால என்ன நினைச்சு நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதனால ஒரு நல்ல முடிவான வார்த்தையா சொல்லுங்க.
6: நான் என் முடிவை மாத்திக்க தயாராவே இல்லை.

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 10:23. காற்றலைகளில் தவழ்ந்து கொண்டிருப்பது காலம் வென்ற பாடல்கள். நேயர்களோட விருப்பப்படி பாடல்கள் பலம் வந்துட்டு இருக்கு. நேரடி தொலைபேசி